साकी की और निभा बल का अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह. I'm a ridiculous person, and you're lucky you've paid no money to see me.